मदोधे नो नीरावे उन्ने कुबले लाहुलली हाई नखले रे ता उन्ने कुबले लाहुलली हमे गावे चरिया वालो एरे दे लाहो गिध्यावे लता दंधुया ही मागा वो घला ना किली पियानो ना हो न्यान्या लाओ वन्या वो फिना भी राओ